0: Hello, hello, hello, hello. Mic testing. What happened, Johnny?
1: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़ के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
0: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. 1